से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं।

0: गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: कल शाम पाकिस्तान ने हमारे कई जवान और सिविलियंस को शहीद कर दिया सिर्फ 30 मिनट में।

सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जय हिंद।

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

0: तुझे देखकर किसी की याद आती है। किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा?
1: मजहर को शांताराम ने मारा।
0: और शांताराम को क्यों मारा?
1: तुझ तक पहुंचना था।
0: अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो
1: मुंबई नहीं ले पाएगा।
0: मुंबई क्या तेरे जेब में पड़ी है?
1: मेरी मोजड़ी में।

0: बरसाती में रहने वाला। आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या?
1: मांडवा
0: रावण से उसकी लंका की